तेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच

सच्चे पातशाह चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना आ फल लगता है टैणी नू और टैणी उतनी चुकती चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सत्संग।

ए ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नित नेम विच फर्क ना पवे तां बख्शीशा दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शीश कर

गया मन की मिठा मन ही जाने और के जाने को वीर मैया राम गुरु मोहे मोहे मन दैया राम गुरु मोहे मोहे मन दई हम आकर निकल पाई गुरु देखे और लोट पोट हो भैया हम निरखट फिरो सब देश निसंतर देखन को।

छोटे अंश को बिरला जाने, को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअं अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअं ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअं अत ऊंचा ताका दरबारा,

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इस लई कि तू मेरा सारियां थावां ते राखी करना, सारियां थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। एक कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वह कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उनू अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां वी माण करिए ना सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बाल को। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दे अवगुण को न चितार दे गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल।

हर सा मेरो स्वार्थ सही, हर सा मेरो सज्जन रसूरा, हर सा मेरो सतगुरु पूरा, उपमा खालसे जात न कई, जैवा एक पार ना लई, शेष रसन सार्द सी बुद्ध।

करे इन्हीं के भावत और आन के सेव सुहातन जी को दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान में लागत नी को आगे फले इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब फीको मोह गृह में तनती मनती सिर लो।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम ये कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतिया अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी धन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोट महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

राख दारा महला पंजवा साहब सचे पातशाह धन गुरु अर्जुन साहब सचे पातशाह जी का शब्द सरनी आयो नाम निधान।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

जिन्हां ते सतगुरु ने बहुत अपार कृपा की। भाई साहब ध्रुव का जिक्र करते ने अपनी वार कहते ने ध्रुव हर्ष दा घर

मेरे मन विच तांग होवे कि मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते पहुंचे।

गुरु पातशाह इथो हुण पिट हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वल तुर पे, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लेके जा रहे ते सच्चे पातशाह ने इस जल दे नाल इशनान कर जदों जल दी गागर ना टिकन दी खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछया

हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित कर हर कंत ना प्रगटी पाठ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ावया दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने

मंगर माहे सोहंदिया हर पिर संग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया।

अंदर बसते हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ए पातशाह हूं ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं। ओ भी हुन मेरा बुरा नहीं चितवदे सारे ही चंगा चितवदे हैं। ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है। तू ता मैनू एनिया बख्शिशा कीतिया हैं एनिया रहमता कीतिया हैं पातशाह हुन ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ। चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है। ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन। ए सतगुरु तेरी मेहर है।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

0: भाई साहब जी को लो श्रवण करिए।
1: गुरु पातशाह जी की पवित्र बाणी द्वारा अपने मना दिया तारा जोड़िए गुरु चरणा नाल हजूर ते कह

हंस हंस के इतने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया के किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि पड़क उठे, पर उना नू की पता सी के शांति दा सोमा जो संसार नू शांति दा उपदेश देन वास्ते आया है, ओदे सामने वड्डे वड्डे पांबड़ ओ भी शांत हो गए। दुनिया दे इतिहास विच

जे हुक्म होया एक रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इना ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जान प्रभु दा भगत सी अंदर जेड़ी ए लालसा उत्पन्न होई परमेश्वर ने ओ दी भावना पूरी कीती कौतक वरत्या ओ अंगारे फुल बन गए एथे ही बस नहीं खंबा तपा के लाल कीता है अग नाल हुकम होया हरनाकश दा प्रहलाद नू इस खंबे नू गलवकड़ी पा मैं वेखदा तेरा परमात्मा तेरा परमेश्वर तेरा राम तैनू किवें बचाण वास्ते आउंदा है। जदों प्रहलाद अगे वध्या खंबे नू गलवकड़ी पाण वास्ते उस खंबे दे विच्चों सेक आया क्योंकि अग नाल तपा के लाल कीता होया सी। मन थोड़ा जा डोल गया भगत दा अंदरों आवाज आई हे भगवान जे मैं इस खंबे नू गलवकड़ी च लिया ते मैं ते सड़ जावांगा। कहंदे ने ऐसी एक दंत कथा सुनन विच आउंदी है कि जा नीज ला के वेखिया प्रहलाद ने उस खंबे दे उत्ते ता की वेखदा है कि एक कीड़ी तुरी आउंदी है। एकदम ख्याल बदल गया भगत दा कि ए कीड़ी निक्की जही इस खंबे ते उत्ते तुरी आउंदी है ते ए नहीं सड़ रही मैं किवें सड़ जावांगा। कहंदे ने गल वकड़ी पा ले पर एक बारी जरूर मन

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आया, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदे, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदे। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे